दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो बदला का को गाहक आयो लाद्यों कल बिरख जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगावी क्यों पुरज पहा मोहन ठगावी।

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग भौराना।

Addig ráadás, ha már. अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे है। भाई साहब भाई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी और जिस वेले राणे नु राजे ने नहीं तकिया तो भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है अद्धी रात दा समा राणी किधर चली राजा उठिया महल दे अंदर राणी नू लभण लग गए सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना आवी मन विच वरत गई है तो प्यारी साध संगत राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउण लगे मंदे भी आउण लगे रानी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है पर अधी राती रानी दा महल विचों है हाजिर होना ए ता मैनू धोखा दिंदी इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया नींद आ गई दिन चढ़ेगा जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया राणी अपने पलंग ते लेटी हुई राजे ने आवाज दिती राणीए उठ राणी उठी राजन हुक्म करो राजे ने पहला सवाल कीता राणी ते के राणीए सच दस तू राती किथे गई सी अधी रात तू गैर हाजिर सी किथे गई सी राणी सोचन लगी जे मैं सच दसदी हां ता जिथे मैं रोज जांदी हां हो सकदा है राजा रुकावट पा दे तो राणी रोज किथे जांदी सी आई साहब जी लिखते साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरु रोज सत्संग जांदी सी महापुरुषां दी संगत रात नू जांदी सी रोज डेली नितनेम बनिया होया सी चाहे मी होवे चाहे हनेरी कैसा भी वेदर क्यों ना होवे राणी तारा रोज नितनेम ना जांदी सी सोचिया जी सच बोलदी तां हो सकदा है राजा सत्संग तू रोक देवे पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी रोटी मिले चाहे ना मिले पर मैं सत्संग तू बगैर नहीं रह सकदा ए प्यार दी निशानी है ए प्यार है राणी सोच राजे ने फिर किया राणी बोल तू राती किथे गई से जे झूठ बोलदी हां तां पति परमेश्वर है स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति ये सच बोलदी हां तां सत्संग तू विछड़दी पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग जिस तरह मच्छी पानी तू बगैर नहीं रह सकती सत्संगी सत्संग तू बगैर नहीं रह सकता

आनंद सावधा पाठ करके कीर्तन भी समाप्त नहीं, अरदास होवेगी, हुक्मनामा कड़ा प्रसाद दी दे बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी। तो आओ हम आनंद सावधा पाठ सारे

एक बारी सारे बोलिए, धन गुरु तेग बहादुर साहब, कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आख देन।

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आखदे ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी सै मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मिलासा, जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे।

माता कहंदी है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया। स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई।

फिर की खुली ताकि फिर खुली सतगुरु कहन लगे आ गए मैनु यकीन सी तू आवेगा अज कुछ भाव घटाया है कि नहीं कीमत घट की है कि नहीं आखन लगा मालक धन गुरु गोबिंद सिंह सत्य पातशाह कीमत कल वाली रखी है लेकिन एक रैत रख दिती है केड़ी महबूबा दे कूचे अंदर मैं दिल में चल जन था नंदलाल कहन लगे अपनी विथिया।

ना प्यावे विषाद कूड़े रास कूड़ा बापार कूड़ बोल करे आहार सर्व धर्म का डेरा दूर ना।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल वो फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नर्क कहीं ना लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

0: गुरु दे शब्द दी विचार दी असिस्टेंस दे नाल गाइडेंस दे नाल इस देही नू काढ़न, इस नू सही शेप च लिया, इस नू सही कंडीशन च लिया। सो उपदेश नंबर एक, एक देही दे लेवल ते वर्क करना है कि इस देही नू सोधना है।
1: ए मन देही सोध तू गुरु शब्द विचार।

हम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर च नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सो, देही नू काढ़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है, तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते इस देही नू सो, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। प्रीत साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करने वाले, अपने आप नू सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट टू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हां, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है असी अलग चेयर ते बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उसनू नू देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्हां नू इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वाच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नू थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्हां नू देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नू देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है। अपने विचार अस्वारी कीजे, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनू देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स बाय गैप।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं, सुनो किमें गले हैं। कहते हैं

हो आप दयाल मनोना विसारयन साध जना के संग भौजल तारयन सागत निंदक दुष्ट।

जे असी उस सवाल नू बदली करना चाहिए ते असी बदली करन दे समर्थ नहीं है, असी नहीं कर सकते। पत्थर दा सुभाव जन्मजात तो कठोरता है। असी चाहिए कि पत्थर नू नरम कर दईए, मोम कर दईए, ये साडे वस दी गल नहीं। हां असी उस नू पीस के बारीक जरूर कर सकते हां, उदी मिट्टी जरूर बना देंगे, पर जिस वक्त पीस के बारीक कीता होया जो विशेष प्रकार का पत्थर सीमट का रूप धारण कर लैंदा, बारीक भावे कितना हो जाए पर उसनू फिर भी बचा बचा के रखना पैंदा कि इहदे उत्ते कोई चार बूंदा पानी दियां ना पै जान, इसनू किते सलाब ना लग जाए, इस करके उसनू ऐसी छां ते रखिया जांदा वी जिथे उसनू किसी प्रकार की सैलाब ना लगे, क्योंकि ऐसा जिस वक्त भी उसनू थोड़ा जिहा सैलाब का असर होया, पानी का असर होया, मुड़ के उसने अपने उस रूप में चले जाना है, मुड़ के फिर पत्थर बन जाना है। असी भावे पी के उसनू बारीक कर दिता पर जिस वक्त मुड़ उसनू अपना चांस लग्या वह मुड़ के अपने उस रूप अंदर आ जाता, बल्कि अगे नालों भी सख्त बन जाएगा। फुल का सुभाव है खुशबू देना, सुगंधी देना, सुंदरता बंडना। फुल भावे किसी गंदगी के ढेर से क्यों ना पैदा हो जाए, कोलों की लंघन लगे हैं, लंघन वाले ने जरूर वह सुगंधी देवेगा। मेरे जैसा मूर्ख आदमी उसनू सवाल कर सकता है भी भलिया तू तो एक गंदगी के ढेर से पैदा हो, तेरे को खुशबू नहीं, तेरे को बदबू आनी चाहिए है, क्योंकि गंदगी का ढेर है। पर आखते हैं क्योंकि फुल का एक जबानदरू सुभा है, जन्मजात का सुभा है, असी उसनू बदली नहीं कर सकते। वो उसे ढंग के नाल अपनी खुशबू भी वंडदा है, उसे ढंग के नाल अपनी सुंदरता भी वंडदा है। इसे तरह के नाल जानवरों के भी अपने सुभा हैं, वस्तुओं के अपने सुभा हैं। सप का जन्मजात तो एक सुभा है डंग मारना ते दूसरे बंदे अंदर जहर प्रवेश करना। जे असी भावे उसनू देवता मान के पूजा भी उसकी शुरू कर दईए, उदे अगे दुध भी पा पा के उसनू असी पिलाना शुरू कर दईए, ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर वचन इस प्रति लिखिया, कहने सप्पे दुध पियाई है वे मुक्ति सट्टे, मुड़ के फिर भी मुंह तो विखी सुटेगा अमृत नहीं सुटेगा। इस करके हर वस्तु के जन्म जात के अपने अपने सुभा हैं, असी उन्हां नू बदली नहीं कर सकते, साडे बस विच नहीं। पर सतगुरु बादशाह महाराज जी जिस वक्त मैं आप जी के जीवन काल वाले पासे ध्यान मार के वेखदा कि तुहाडे जीवन काल अंदर ऐसिया ऐसिया घटनावां होईयां हन जिन्हां राही असी वेख सकते हाँ कि असी जिस प्रकार की किसी की कोई अपने जन्म का सुभाव जिदा का भी क्यों ना हो, पर तुहाडी कृपा दृष्टि जिस पासे भी चली गई उसके सुभाव उस बदली कर दिता। असी भावें पत्थर दे पुजारी ते नहीं आ पर श्री पंजा साहब नूं असी कदे भी भुल नहीं सकते। अज भी श्री पंजा साहब पाकिस्तान विखे वह स्थान सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज का पुकार पुकार के दुनिया के लोगों नूं यह गल आख रहे हैं कि मेरे ते सतगुरु नानक पातशाह महाराज की कृपा दृष्टि हुई है। अज भी उत्थे चले जाओ उस पंजे दे विच अपना हथ ला के मनुख वेखदा कितना मुलायम कितना सुंदर वह पंजा लग्या होया, एक पत्थर के अंदर सतगुर पातशाह महाराज जी की कृपा दृष्टि ने उसनू मोम बना दिता है। रीठे का अपना जन्म जबात का समा है, वह किसी वेले भी मिठा नहीं हुंदा कौड़ा हुंदा, पर जिस रीठे थले सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी जाके विराजमान होए हैं उस रीठे नू अज भी उस पासे मिठे फल लगते हैं जिधर सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जाके निवास किया। एक छोटी जी गाथा मैं चेते आ रही है, सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी जंगल चों दी गुजर रहे सन, जंगल चों गुजरदिया होया बड़ा बियाबान एक खतरनाक किस्म का जंगल सामने आ गया, ते उस जंगल के अंदर सामने की वेखिया बड़े सुंदर किस्म के फल लटकते हैं, सारा जंगल फलों का आ गया, बड़े वेखने च सुंदर फल हैं। मरदाने का मन
ललचाया इस गल लई कि फल खाण नूं जी कीता ते सतगुरु नानक पातशाह महाराज नूं आखण लग्या कहण लग्या जी गरीब नवाज पातशाह नेड़े तेड़े कोई किसी प्रकार का कोई पिंड कस्बा कोई शहर ग्रां नजरी नहीं आउंदा जंगल पता नहीं कितने दूर तक है जी गरीब नवाज पातशाह जी पता नहीं कितनी देर तक कितनी देर बाद जाके किसी नगर शहर ग्रां पहुंचांगे जी कृपा करो आगिया बख्शिश करो ते मैं इह थोड़े जे फल खा लवां। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने आखिया कहण लगे मरदाने आ इह फल नहीं खाने इनकार का इशारा कर दिता। थोड़ी देर तो बाद फिर मंग कीती ते वार वार दो तीन वार वार मंग करन तो बाद सतगुरु नानक साहिब पातशाह महाराज ने आख्या कहण लगे मरदाने आ सामने वाले दरख्त नालों जाके फल तोड़ ते खा लै पर एक गल का ख्याल रखी पले नहीं बनने। मरदाने ने फल तोड़े मुंह विच पाए ज्यों ज्यों खांदा ते मरदाना बड़ा हैरान होया कहण लगे इतने फिरदे मिठे फल इतने स्वादिष्ट इतना सुंदर फलां दा ए बगीचे ही मनो बनिया होया ए साड़ा जंगल ते सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी मैनू खाण तो क्यों रोक दे रहे भला। मैं बल्ख बुखारे तक गया अफगानिस्तान तक गया काबुल कुंधार तक गया सुंदर मेवे मैनू खाण नू प्राप्त होए वधिया तो वधिया फल मैं खादे पर अज तक इतनी मिठास मैनू किसे विचों इतना स्वाद मैनू किसे विचों नहीं आया ते इस लालच करके मरदाने ने एक मुठ्ठी भर फल जिहड़े सन अपनी नाल जेब च भी पा ले ते ज्यों मरदाना दो चार कदम अगे तुरिया ते ओह फल मुड़ के फिर अपने मुंह च पाया ते कौड़ा जहर वर्गा फल वेख के मरदाने ने थुकना शुरू करता। सतगुरु पातशाह जी पिछे मुड़े वेखण लगे कहण लगे मरदाने की होया कहण लगा जी पातशाह एक दाणा मुंह च पाया पर कौड़ा जहर हो गया। सतगुरु पातशाह जी ने आके कहण लगे मरदाने ये सारे का सारा जितना तू जंगल वेख रहे ये सारा जहर का जंगल है सुरदे सारे के सारे फल तेन आख्या पले नहीं बनने ते सतगुरु नानक पातशाह बाजू आखण लगा कहण लगा जी पातशाह ओ दे बड़े मिठे सन मरदाना पल दी पल घड़ी दी खड़ी ए गल समझ ना सकिया कि ओ फल नहीं सन मिठे बल्कि गुरु नानक दी दृष्टि मिठी सी जिस पासे हो गई सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने उन्हां दी तस्वीर बदली कर दी ते पल अंदर ही समझ के सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी चरण कमलों ते डिग पिया ते आखण लगा कहण लगा जी गरीब नवाज पातशाह जी मेरे कोल भुल होई मैं समझ ना सकिया ते सतगुरु गुरु पातशाह महाराज जी उस्त अंदर पवित्र बचन उच्चारण कीते पटा ने आखण लगे कहण लगे अमें दिष्ट शुभ करे करे अग पाप सगर मल ए गरीब नवाज पातशाह जी तुहाडी अमृत दृष्टि है जिस पासे भी हो जाती है ए अमृत दृष्टि सारियां दे पाप नाश कर देंदी है दुखा कलेशा दा नाश कर देंदी है सुखा दा प्रवेश हो जाता है। ते गरीब नवाज पातशाह धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने इस प्रति एक बड़ा सुंदर कमाल वचन उच्चारण किया कहण लगे गरीब नवाज पातशाह जी जे एक निमक भर तुहाडी दृष्टि मैनू प्राप्त ना होंदी ते मैं एक रतियों भी हौला सी सुइयां दे अंदर। सतगुरु गुरु गरीब नवाज पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी आखण लगे सराबक सुध समूह सुधान के देख प्रयोग कर दी के ते इसे पंक्तियां दे अखीर अंदर जाके सुई दे अंदर कहण लगे गरीब नवाज पातशाह जी कहने गरीब नवाज सतगुरु अकाल पुरख पातशाह महाराज जी श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रत्ती बन एक रत्ती के जे तुहाडी मैनू एक रत्ती भर कृपा प्राप्त ना होंदी ते मैं गरीब नवाज पातशाह जी एक रत्ती तो भी हल्का सा इस करके ससी जदों भी परमेश्वर कोलो अकाल पुरख वाहिगुरु कोलो मंगनी है कृपा दृष्टि ते अज असी जे कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहिए ते असी किवें प्राप्त करिए ए मसला सतगुरु गुरु पातशाह महाराज जी ने साडे सामने जो है इस नूं हल कीता। कहण लगे गुरु के प्यारा सिखा तू भी चाहुंदा है कृपा दृष्टि ते आ मैं तैनूं दसां तू किवें प्राप्त कर सकदा है। अमृत रस हर कीर्तनों को विरला पीवे कहने ए अमृत रूपी कीर्तन दा रस जे तू प्राप्त करें ते सतगुरु पातशाह जी ने दोवें शर्त बराबर रख दित्ती साडे सुनने वालियां लई करन वालियां लई भी कहने कोई गावे को सुने हर नामा जित लाए कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए आओ असी भी इस कृपा दृष्टि नूं प्राप्त करन लई उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती करदे होए ते उस दी कृपा दृष्टि नूं